जीव करो करीब निवाज यंत्र जामी सच्चे पातशाह जी महाराज साहेब कमाल साहेब धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज तिना दे पावन स्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहेब विखे पावन स्थाना दिया हाजरियां परदे गुरु कियां संगता वल्लों गुरबाणी दे शब्द कीर्तन सत्कार करदे हुए बेअंत माया अरदास कराई है पातशाह जी सतगुरु जी आप नाम जानी जान हो सतगुरु जी कृपा करनी रहमत बख्शिश करनी दे रुकता दे नाम दे दात कारज राज करनी आसा मनसा पूर्ण करनी हर मैदान कार्य पत्र रखनी यात्रा सफलेख

नानक दास तेरी शरण आई वाली सदा सदा बल्लेहारे सदा सदा बल्लेहारे सचिया सदा सदा बल्लेहारे तदियागे आरे दासे हमारी वाइरी तदियागे आरे

चतुर्चक्रवर्ते चतार्थकभूते स्वयम्भ सुमं सर्वदा संयुक्ते दुकालंकरणासे दयालंग स्वरूपे सदांग संगे अपंगांग विभूते देख तेगो फतेह नुसरत बेदन व्याप्तज अज नान गुरु गोविंद सिंह जी श्री अकाल पुरख सहाय दरबार मित्र दरबारा सतखंड संकार लक्ष्मी कड़ी तुमरे दरबारा सर्व देवते के नमस्कार दोहरा नानक गुरु गोविंद सिंह जी पूरन गुर अवतार जगमग ज्योत बिराज रही श्री अब

जी गुरु निवास अंतरजामी सच्चे पातशाह जी महाराज, धन धन श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज, आप जी दे पावन पवित्र स्थान तक सचखंड दरबार दी हाजरिया भरते हुए कीर्तन के सत्कार जो संगत वालों बेनत माया हाजिर हुए, जिस खजाने विच माया हाजिर की सो सुख जाने भरपूर करना, नाम दान गुरसिखी वाला जीवन बख्शना देह अरुखता बख्शनी, आसा मनसा संपन्न करनी, यात्रा सफली करनी। सिखों

प्रसाद तुमर छंद हर जन्म मरण विहीन दस चार चार प्रवीन अकलंक रूप अपार अंशिज तेज उदार अनभिज रूप दुरंत सब जगत भगत महंत जस तिलक भूवृत भान दस चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोक शोक बिदार कल काल करम विहीन सब करम धर्म प्रवीन अनखंड अतुल प्रताप सब थाप्यो जह थाप अनखेद भेद अछेद मुख चार गावत वेद जह नेत निगम का हंत मुख चार भगत बेअंत अनभिज अतुल प्रताप अनखंड अमित थाप जह कीन जगत पसार रचयो विचार विचार अनंत रूप अखंड अतुल प्रताप प्रचंड जह अंड ते ब्रह्मांड कीने सो चौदह खंड सब कीन जगत पसार अव्यक्त रूप उदार जह कोट इंद्र नृपार कई ब्रह्म बिसन बेचार कई राम कृष्ण रसूल बिन भगत को न कबूल कई सिंथ बिंध नगेंद्र कई मच्छ कच्छ फनिंद्र कई देवाद कुमार कई कृष्ण बिसन अवतार कई इंद्र बार बुहार कई वेद ओ मुख चार।

सिमृत बखान कहूँ कथत ही सो पुराण। कई अग्नहोत्र करंत गई उर्द ताप दुरंत गई उर्द बाहु संन्यास कहूँ जोग भेष उदास। कहूँ निवली करम करंत कहूँ पौना हार दुरंत कहूँ तीरथ दान अपार कहूँ जग करम उदार। कहूँ अग्नहोत्र अनूप कहूँ न्याय राज विभूत कहूँ सहस्र सिमृत री

कहु रंक राजकुमार, कहु वेद व्यास अवतार। कई ब्रह्म वेद रटंत, कई सेख नाम उचरंत। बैराग कहूँ सन्यास, कहूँ फिरत रूप उदास। सब करम फोकट जान, सब

अभे खरी दुख हरिय द्वय खरी अकाल हरि अपाल हरि अछेद हरि अभेद हरि अजंत्र हरि अमंत्र हरि सो तेज हरि अतंत्र हरि अजात हरि अपात हरि अमित्र हरि अमात हरि अरोग हरि अशोक हरि अभरम हरि।

त्वा प्रसाद कबित खुकमल हरि गज गदहा विभूत दारिक दुआ मसान बास करियो ई करत है। खुकमट बासी लगे डोलत उदास मृग तरवर सदीव मोन सदई मरत है। बिंद के सदयता ही जिकी बड़िया देत बंदरा सदीव पाए नंगे फिरत है। अंगनाधीन काम क्रोध में प्रवीण एक ज्ञान के विहीन छीन कह सके तरत है। भूत बन चारि छित छौना सब दूधा धारी पौन के आहारी सो भुजंग जानियत है। तृण के बछैया धन लोभ के तजय तितु गौवन के जैया ब्रिक भैया मानियत है। नभ के उडैया ताहे पंच की बड़ैया देत बगुला बिडाल ब्रिक ध्यानी ठानियत है। जेते बड़े ज्ञानी तिनो जानी बब खानी नाहे ऐसना प्रपंच मन भूल आनियत है। भूम के बसैया ताहे भूचरी के जैया कहे नभ के उडैया सोच रैया कह बखानी है। फल के बछैया ताहे बांदरी के जैया कहे आदस फिरैया तै तो भूत के पछानी है। जल के तरैया को गंगे ऋषि कहत जग आग के भचैया सो चकोर सम मानी है। सूरज सिवैया ताहे कौल की बडाई देत चंद्रमा सिवैया को कवि के पहचानी है। नारायण कछ मछ तेंदुआ कहत सब कौल नाब कौल जेह ताल में रहत है। गोपीनाथ गुजर गोपाल सब दिन चारी ऋषि के सनाम के महंत लहियत है। माधव भवर ओ अटेर को कन्हैया नाम कंस को बधैया जम दूत कहियत है। मूड़ रूढ़ पीट तन गूढ़ता को भेद पावे पूजत न ताहे जाके रखे रहियत है। विश्वपाल जगत काल दीन दयाल बैरिसाल सदा प्रतपाल जम जाल ते रहत है। जोगी जट्टाधारी सती साचे बड़े ब्रह्मचारी ध्यान काज भूख प्यास देह पैसहत है। न्योली करम जल होम पावक पवन होम अधोमुख एक पाए ठंड न बहत है। मानव फनिंद देव दानव न पावे भेद भेद योग देव नेत नेत कह कहत है। नाचत फिरत मोर बादर करत गोर दामनी अनेक भाव करोई करत है। चंद्रमा शीतल न सूरस से तपत तेज इंद्र सोना राजा भव भूम को भरत है। शिव से तपस्या आदि ब्रह्मा से न भेद जारी सनत कुमार से तपस्या न अनत है। ज्ञान के विहीन काल फांस के अधीन सदा जुगन की चौकरी फिराई फिरत है। एक शिव भय एक गए एक फेर भय राम चंद्र कृष्ण के अवतार भी अनेक है। ब्रह्मा विषण किते वेद यो पुराण किते सिमृत समूहन के होए होए बितय है। मोन दी मदार किते अश्विनी कुमार किते अंसा अवतार किते काल बस भय है। पीरे पिकम्बर किते गाने ना परत इत भूमि हित होय के फिर भूमि ही मिलय है। जोगी जति ब्रह्मचारी बड़े बड़े छत्रधारी छत्र ही की छाया कई कोसलो चलत है। बड़े बड़े राजन के दावत फिरत देश बड़े बड़े राजन के द्रप को दलत है। बान से महीप औदलीप कच छत्रधारी बड़ो अभिमान भुज दंड को करत है। दार से दिल्ली सर द्रुजोधन से मानधारी भोग भोग भूम अंत भूम में मिलत है। सिज दे करे अनेक तोप ची कपट बेस पोसती अनेक दानी वावत है। शीस कौ कह भयो मल्ल जो पेगाढ़त अनेक दंड सोत न डंडौत अस डांग अथ तीस कौ कह भयो रोगी जो पे डारु रहे उर्द मुख मन तेना मुंड ने हरायो आदिस कौ कामना अधीन सदा दामना प्रवीण एक भावना विहीन कैसे पावे जगदीश कौ। शीस पट कत जाके कान में खजूरा दस मुंड छट कत मित्र पुत्र हूं के शोक सौ। आग को चरैया फल फूल को बछैया सदा बन को भ्रमैया और दूसरों न भूक सौ। कहाँ भयो भेट जो खसत शीस वृक्षन सो माटी को बछैया बोल पूछ लीज जोक सौ। कामना अधीन काम क्रोध में प्रवीण एक भावना विहीन कैसे बिड पर लोक सौ। नाचोई करत मोर दादर करत शोर सदा घन घोर घन करोई करत है। एक पाए ठंडे सदा बन में रहत ब्रिज फूक फूक बाम भूम श्रावक धरत है। पाहन अनेक जुग एक ठौर बास करे काग और चीर देश देश बिचरत है। ज्ञान के विहीन महादान में न हुजलीन भावना यकीन दीन कैसे कह तरत है। जैसे एक सोंगी कहूँ जोगिया बैरागी बने कब हूँ सन्यास भेष बन के दिखावई। कहूँ पौन हारी कहूँ बैठ लाए तारी कहूँ लोभ की खुमारी सो अनेक गुण गावई। कहूँ ब्रह्मचारी कहूँ हाथ पे लगावे बारी कहूँ दंडदारी होय के लोगन ब्रह्मावई। कामना अधीन पर्यो नाचत है नाचन सुज्ञान के विहीन कैसे ब्रह्म लोक पावई। पंच बार गीदर पुकार पर शीत काल कुंचर ओगा दहा अनेक दा पुकार ही। कह भयो जो पकल वत्र लियो कांसी बीज चीर चीर चोर टाक उठारन सो मार ही। कह भयो फांसी डार बूढ़ो जड गंग धार डार डार फांस ठग मार मार डार ही। डूबे नरक दार मूड ज्ञान के बिना विचार भावना विहीन कैसे ज्ञान को विचार ही। ताप के सहत जो पे पाइये तापनाथ तापना अनेक तन घायल सहत है। जाप के किए तो जो पे पायत अजाप देव पूदना सदीव तुही तुही।

सन्यासी को जोगी भयो को ब्रह्मचारी को जति अनुमान बो हिंदू तुरक को रावजी इमाम साबी मानस की जात सब एक पहचान बो करता करीम सोई रास करहीम ओए दूसरो न भेद कोई भूल ब्रह्म मान बो एक ही की सेव सब ही को गुर देव एक एक ही स्वरूप सब एक ज्योत जान बो देहो राम सीत सोई पूजाओ निवाज ओई मान सब एक पे अनेक को भ्रमाओ है देवता देव जश गंधर्व तुरक हिंदू न्यारे न्यारे देशन के

जैसे एक आग ते कनु का कोट आग उठे न्यारे न्यारे हुए के फिर आग में मिलाएंगे। जैसे एक धूर ते अनेक धूर पूरत है धूर के कनु का फिर धूर ही समाएंगे। जैसे एक नद ते तरंग कोट उपजत है पान के तरंग सब पान ही कहाएंगे। तैसे विश्व रूप ते अभूत भूत प्रकट होए ताहि ते उपज सब ताहि में समाएंगे। किते कछ मछ किते उनको करत भज किते अच वच हो सब पच उड़ जाएंगे। किते नभ बीज अच पच को करेंगे भज के तक प्रत

जलीनता हितयो बज सबता ही मैं समाहेंगे। कुकत फिरत कित रोवत मरत कित जल में डुबत कित आग में जरत है। कित गंग वासी कित मदीना मक्का निवासी के तक उदासी के भ्रमाई फिरत है। करवत सहत कित भूम में गड़त कित सुआ पे चढ़त कित दुख को भरत है। ज्ञान में उड़त कित जल में रहत कित ज्ञान के विहीन जग जा रही मरत है। सोध हारे देवता विरोध हारे दानो बड़े बोध हारे बोध प्रबोध हारे जापसी। घस हारे चंदन लगाए हारे चुआचार पूज हारे पाहन चढ़ाए हारे लापसी। गा हारे गोरन मनाए हारे मडी मटली पहारे भीतन लगाए हारे छापसी। गाय हारे गंधर्व बजाए हारे किन्नर सब पच हारे पंडित तपन।

न रोगं न शोकं न मोहं न मातं न कर्मं न वर्मं न जन्मं न जातं अद्वैखंग अभेखंग जोनि स्वरूपे नमो एक रूपे नमो एक रूपे परे यं परा परं प्रज्ञा प्रकाश अछेदं गच्छयाद अद्वय अविनाशी न जातं न पातं न रूपं न रंगे नमो आद भंगे नमो आद भंगे किते कृष्ण से कीट कोटे उपाय उसारे गड़े फेर मिटे बनाए अकादे अभयाद अद्वय अविनाशी परे यं परा परम पूर्ण प्रकाशी न आदंग न व्यादंग गादं स्वरूपे अखंड प्रतापाद अच्छय विभूते न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहं न गेहं सनेहं सनाथे उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न बाते न सत्रे न वित्रे सभूते भविखे भवाने अचित्रे न रायं न रंगं न रूपं न रेखं न लोभं न चोभंग भूतंग फेकं न सत्रं न मित्रं न नेहं न गेहं सदेवं सदा सर्व सर्वत्र सनेहं न कामं न क्रोधं न लोभं न मोहं जोनि अच्छयाद अद्वय जोहं न जन्मं न मरणं न वर्णं न व्याधं न रोगं न शोकं भय निर्विखादं अछेदं अभेदं कर्मं कालं अखंडं भंडं प्रचंडं पालं न तातं न मातं न जातं न कायं न नेहं न गेहं न भर्मं न भायं न रूपं न भूपं न कायं न कर्मं न त्रासं न प्रासं न भेदं न भ्रमं सदेवं सदा सिद्धं।

ग्रह कहूँ देह दुख कहूँ औखति रोग के सुख सुखं कहूँ देव विद्या कहूँ दैत बानी कहूँ जच गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राजसी सातकी तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग रहता कहूँ जोग जोगतं कहूँ भूमि की भुगत मैं भरम भुगतं कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जच विद्या धरे मानवी हो कहूँ राजसी हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट पन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ व्योम बानी कहूँ कोक की काव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपं कहूँ मद्र बानी कहूँ क्षुद्र स्वरूपं कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपं कहूँ चेष्टा चार चित्रंग स्वरूपं कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ शुद्ध सेखं कहूँ ब्रह्म धर्मं कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मं कहूँ ज्वाल स्वरूपं जरा रहत देहं कहूँ नेह देहं कहूँ त्याग गृहं कहूँ जोग भोगं कहूँ रोग रागं कहूँ रोग हर्ता कहूँ भोग त्यागं कहूँ राजसाजं कहूँ राजरीतं कहूँ पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतं कहूँ अरबी तोर की पारसी हो कहूँ पहलवी पस्तवी संस्कृति हो कहूँ देश भाषा कहूँ देववाणी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तंत्र सारं कहूँ जंत्र रीतं कहूँ शस्त्र धारं कहूँ होम पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चारणी गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीतं कहूँ मलेज भाख्या कहूँ वेद रीतं कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नागवाणी कहूँ गारुडू गूढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मक्षरा हो कहूँ वीर विद्या भूतं प्रभा हो कहूँ छल छाला धरे छत्रधारी कहूँ राज

अच्छा स्वरूप वह अनाथ अंतुट तेज अनखुट भंडार दाता दुरंत सर्वंग प्रकार अनभूत तेज अंश जगात करता सदीव हरता सनात आसन अडोल अनभूत करम दाता दयाल अनभूत धर्म जय सत्र मित्र नहीं जन्म जात जय पुत्र प्रात नहीं मित्र मात जय करम भरम नहीं धर्म ध्यान जय नेह गेह नहीं प्योतबान जय जात पात नहीं सत्र मित्र जय नेह गेह नहीं चेहन चित्र जय रंग रूप नहीं राग रेख जय जन्म जात नहीं भरम भेख जय करम भरम नहीं जात पात नहीं नेह गेह नहीं पितृ मात जय नाम धाम नहीं बर्ग ब्याद जय रोग शोक नहीं सत्र साध जय त्रास वास नहीं देह नाश जय आद अंत नहीं रूप रास जय रोग शोक नहीं जोग जुगत जय त्रास आस नहीं भूम भुगत जय काल ब्याल कट्यो न अंग अच्छा स्वरूप अखय भंग जय नेत नेत उचरंत वेद जय अलख रूप कथत कतेव जय अलख रूप आसन अडोल जय अमित तेज अच्छा अतोल जय ध्यान काज मुंजन अनंत कई कल्प जोग साधत तुरंत तन सीत खाम बरखा सहंत कई कल्प एक आसन वितंत कई जतन जोग विद्या विचार साधंत तद पावत न पार कई ऊर्ध बाह देशन भ्रमंत कई ऊर्ध मध्य पावक झुलंत कई सिमृत शास्त्र तुचरंत वेद कई गोक काव कथत कतेब कई अग्नहोत्र कई पौन हार कई कर्त कोट मृत को आहार कई कर्त साग पत्र भच्छ नहीं तदब देव होवत प्रत्यक्ष कई गीत गान गंधर्व रीत कई वेद शास्त्र विद्या प्रतीत कहूँ वेद रीत जग याद करम कहूँ अग्नहोत्र कहूँ तीर्थ धर्म कई देश देश भाखा रटंत कई देश देश विद्या पढ़ंत कई कर्त पांत बांधन विचार नहीं नैक दास पायतन पार कई तीरथ तीरथ भरमत सोभरम कई अग्नहोत्र कई देव करम कई कर्त वीर विद्या विचार नहीं तदप दास पायतन पार कहूँ राजरीत कहूँ जोग धरम कई सिमृत शास्त्रत उचरत सोगरम न्यौली याद करम कहूँ हस्तदान कहूँ अश्वमेध मुख को बखान कहूँ कर्त ब्रह्म विद्या विचार कहूँ जोग रीत कहूँ वृद्ध चार कहूँ कर्त जच गंधर्व गान कहूँ धूप दीप कहूँ अर्घदान कहूँ पितृ करम कहूँ वेद रीत कहूँ नृत्य नाच कहूँ गान गीत कहूँ कर्त शास्त्र सिमृत उचार कई भजत एक भग निराधार कई नेह देह कई गेह वास कई भ्रमत देश देशन उदास कई जल निवास कई अग्न ताप कई जपत उर्द लटकंत जाप कई जपत जो कल्पंग प्रजंत नहीं तदप दास पायतन अंत कई कर्त कोट विद्या विचार नहीं तदप दृष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पान बहु कर्त हो मर जग दान बिन एक नाम एक चित्त लीन फोकटो सर्वधर्मा विहीन त्व प्रसाद तोटक छंद जय जम पह जुगण जुह जुअंग कंप हो मेर पयाल भुवंग तपताप सर्व जलेर थलंग धन उछरत इंद्र कुमेर बलंग अनखेद स्वरूप भेद भयंगन खंड अभूत छेद छयंगन काल पाल दयाल सुअंग जय ठटियंग मेर आकाश भुअंग अनखंड अमंड प्रचंड नरंग जय रचियंग देव देव वरंग सब कीनी दीन जमीन जमा जय रचियंग सर्व मकीन मका जय राग न रूप न रेख रुखंग जे ताप न साप न शोक सुखंग जे रोग न शोक न भोग भुअंग जे खेद न भेद छेद छयंग जय जात न पात न मात वितंग जय रचियंग छत्री छत्र चितंग जय राग न रेख न रोग भणंग जय द्वैख न दाग न दोख गणंग जय अंड ते ब्रह्मंड रचियो दस चार करी नवखंड सचियो रज तामस तेज तेज कियो अनफोबत आप प्रचंड लियो श्रेय सिंध रुभिंद नकिंद नकंग श्रेय जज गंधर्व फणिंद भुजंग रज देव देव भेव नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगंग कई कीट पतंग भुजंग नरंग रज अंडज सेतज उत भुजंग ये देव देव सराध पितंग अनखंड प्रताप प्रचंड गतंग प्रभु जातन पातन ज्योत जुतंग जय तातन मातन प्रात सुतंग जय रोग न शोक न भोग भुअंग जय जंपह किन्नर जच्छ जुअंग नर नार नपुंसक जाह किए गण किन्नर जच्छ भुजंग दिए गज बाजर धादिक पांत गणंग भव भूत भवेख भवान तुअंग जय अंडज सेतज जय रजंग रज भूमा काश पताल जलंग रज पावक पवन प्रचंड बली बन जास कियो फल फूल कली भू मेर आकाश निवास चितंग रज रोज एकादश चंद्र पृतंग दुत चंद दिनी साय दीप दई जय पावक पवन प्रचंड मई जय खंड अखंड प्रचंड किए जय छत्र उपाय छपाय दिए जय लोक चतुर्दश चार रचे नर गंधर्व देव देव सच्चे अंधूता भूता छूत मतंगन गाद प्याद अनाद गतंगन खेद भेद छेद नरंग जय चार चतुर्दश चक्र फिरंग जय राग न रंग न रेख रुगंग जय शोक न भोग न जोग जुगंग भुव भंजन गंजन आदि सिरंग जय बंदत देव देव नरंग गण किन्नर जाच भुजंग रचे मण माणक मोती लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज वृतंग जय पार न पावत पूर मतंग
अनखंड स्वरूपा दंड प्रभा जय जमपद भेद पुराण सभा जय भेद कतेब अनंत कह जय भूत अभूत न भेद लह जय वेद पुराण कतेव जप सुत सिंधा दो मुख ताप तप कई कल्पन लो तब ताप करे नहीं नैक कृपा नित पान पर जय फोकट धर्म सब तज है एक चित्त कृपा नित को जप है देव याब सागर को तर है भव भूल न देह पुनर्धर है एक नाम बिना नहीं कोट प्रति एम वेद उचार सार सुती जो वारस के चस के

अगंज आदि देव है अभंज भंज जानिया भूत भूत है सदा गंज गंज मानिया अदेव देव है सदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्ध दास दीव सर्वसात है अनाथ नाथ नाथ है अभंज भंज है सदा गंज गंज गंज है सदीव सिद्ध वृद्धता अनूप रूप स्वरूप है अछिज तेज मानिय सदीव शुद्ध शुद्धता प्रताप पत्र जानिय न राग रंग रूप है न रोग राग रेख है अदोग दाग तक है अभूत भ्रम फेक है न तात मात जात है न पाद चिहन वर्ण है अदेक शेख फेक है सदीव विश्वभरण है विश्वंबर विश्वनाथ है विशेख विश्वभरण है जिमी जमान के विके सदीव करम भरम है अद्वैक है अभेक है अलेख नाथ जानिए सदीव सर्वठौर में विशेख आन मानिए न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुराने और कुरान नेत नेत कह बतावई न करम में न धर्म में न भरम में बताइए गंज आद देव है कोस कैस पाइये जिमी जमान के विके समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाट है न घाट बाट होत है नहान है न बान है समान रूप जानिए मकीन ओ मकान अप्रमान तेज मानिए न देह है न के है न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र है न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न सात है न दुख है न दाग है न द्वैख है न देह है न सिंह है न शार है न राव है न रंग है न मान है न मौत है न साक है न संग है न जच है न गंधर्व है न नर है न नार है न चोर है न साव है न साह को कुमार है न ने है न गे है न देह को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छल को मिलाओ है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को स्वरूप है न राग है न रंग है न रेख है न रूप है न जंत्र है न मंत्र है न तंत्र को बनाओ है न छल है न छिद्र है न छाया को मिलाओ है न राग है न रंग है न रूप है न रेख है न कर्म है न धर्म है अजन्म है अभेक है न दात है न मांत है अखल खंड रूप है अचेत है अभेद है न रंग है न भूप है परे है पवित्र है पुनीत है पुराण है अगंज है अभंज है करीम है कुरान है अकाल है अपाल है ख्याल है अखंड है न रोग है न शोक है न भेद है न भंड है न अंग है न रंग है न संग है न साध है प्रिया है पवित्र है पुनीत है प्रमात है न सीत है न सोच है न घ्राम है न घाम है न लोभ है न मोह है न क्रोध है न काम है न देव है न दैत है न नर को स्वरूप है न छल है न छिद्र है न छिद्र के विभूत है न काम है न क्रोध है न लोभ है न मोह है न द्वैख है न भेख है न दुई है न द्रोह है न काल है न बाल है सदीव दयाल रूप है अगंज है अभंज है अभ्रम है अभूत है अछेद छेद है सदा गंज गंज गंज है अभूत भेक है बलिय रूप राग रंग है न द्वैख है न भेख है न काम क्रोध कर्म है न जात है न पात है न चित्र चिहन वर्ण है व्यंत है अनंत तेज जानिय भूम भिज है सदा छिज तेज मानिए न आद है न व्याद है अगाध रूप लेखिय दुख है अदाग है अच्छे प्रताप देखिय न कर्म है न भरम है न धर्म को प्रभाव है न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को रलाव है न छल है न छिद्र को स्वरूप है।

गजाधपि नरादपि करंत सेव है सदा सिद्धस्पति तपस्पति वनस्पति जप सदा अगस्त आदि जे बटे तपस्तपि विशेखिय बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिय अगाध आदि देव की अनाद बात मानिए न जात पात मंत्र मित्र शत्रु स्नेह जानिए सदैव सर्वलोक के कृपाल ख्याल में रह तुरंत द्रोह देह के।

रूप रागना रेख रंगना जन्म मरण विहीन आदनात अगाध पुरख सो धर्म करम प्रवीण जंत्र मंत्रण तंत्र जाको आद पुरख अपार हस्त कीट बिखे बस सब ठोर मैं निर्धार जात पात ना तात जाको मंत्र मातना मित्र सर्व ठोर बिखे रमयो जय चक्र चहन न चित्र आद देव उदार मूर्त।

जैसे किन्नर मछ मानस मुर्ग उर्ग पार नेत नेत पुकार ही शिव सकर ओम उचार सर्व सपत पतार के तर जाप ही जह जाप आद देवा गाद तेजा नाद मूर्त अताप जंत्र मंत्र न आवई कर तंत्र मंत्र न कीन सर्व ठौर रहे हो विराज धिराज राज प्रवीन जाच गंधर्व देवदानु न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैसन के बिखय विराज सूत्र भी वह नाहे गुड़ गौड़ न भील भी कर ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न मद उर्द न भूमा का सनूप जात जन्म न काल करम न धर्म करम विहीन तीर्थ जातरण देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सपत पतार के तर जानिए जह जोत शेष नाम सहंस फन नह नेत पूरण होत सोत सोत हटे सभय दुर विरोध दानव सरब गाय गाय हटे गंधर्व गवाय किन्नर गरब पड़त पड़त सके महाकब कटत गाड़ अनंत हार हार कहे उस भूमिर नाम नाम दुरंत वेद भेद न पायो लखियो न सेवक तेब देव दानो मूड मानो जच न जाने जेब भूत भव भवान भूपत आदनाथ अनाथ अगन बाचले थले मय सर्व ठौर निवास देह गे न ने सने अभेह नाथ अजीत सर्व गंजन सर्व भंजन सर्व ते अनभीत सर्व कर्ता सर्व हर्ता सर्व दयालत वेख चक्र चहन न बरन जाको जात पात न भेख रूप रेख न रंग जाको राग रूप न रंग सर्व लायक सर्व गायक सर्व ते अनभंग सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व को प्रतपाल दीन बंध दयाल स्वामी आद देवपाल दीन बंध प्रवीण श्रीपत सर्व को करतार बरन चिहन न चक्र जाको चक्र चिहन कार जात पात न गोत्र गाथा रूप रेख न बरन सर्व दाता सर्व ज्ञाता सर्व भू को भरन दुष्ट गंजन शत्रुभ

छका छ अपार भूमका जले तले मेहमानी है जह नाम दुष्ट हरता पुष्ट करता श्रेष्ठ हरता काम दुष्ट हरना श्रेष्ठ करना दयाल लाल गोबिंद मित्र पालक शत्रु बालक दीन दयाल मुकंद अखो दंडन दुष्ट खंडन काल हूं के काल दुष्ट हर नंग पुष्ट कर नंग सर्व के प्रतपाल सर्व करता सर्व हरता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निज भाम सर्व भुक्ता सर्व जुगता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमृतन सर्व शास्त्रन सर्व वेद विचार दुष्ट हरता विश्व भरता आदि रूप अपार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि देवा खंड भूमका जले थले मह जपत जाप अमंड श्रेष्ठ चार विचार जेते जानिए सब चार आदि देव अपार श्रीपद दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञाता सर्व मान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कूट इंद्र उपेंद्र जन्म जाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावे शिव रुद्र मुखचार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास सनक सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भे मुखचार आद अंत न मध्य जाको भूत भव भवान सत दुआपर तृतीय कलयुग चतुर काल प्रधान ध्याय ध्याय थके महामुन गाय गंधर्व पार हार हार थके सब निपाइये तह पार नारद आदिक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्याय ध्याय थके सब कर कूट कष्ट दुरंत गाय गाय थके गंधर्व नाच बछर पार सोद सोद थके महा

सब प्रताप जगदीश को कहो सकल विद तैन दोहरा। को आत्मा स्वरूप है कहाँ श्रेष्ठ को विचार, कौन धर्म को कर्म है कहो सकल विस्तार दोहरा। कह जीतव कह मरण है कवन सुरक कह नरक, को सुखड़ा को मूढ़ता कहाँ तरक कव तरक दोहरा। को निंदा जस है कवन।

तोहरा कहाँ रंग राजा कवन हरक सोख है कवन को रोगी रागी कवन कहो तत्म है तवन दोहरा कवन दृष्ट को पुष्ट है कहाँ सृष्ट को विचार कवन सृष्ट को भ्रष्ट है कहो सकल विस्तार दोहरा।

सुर नर मुन बंदन दुष्ट निकंदन भ्रष्ट विनाशन मृत मथे कावरु कुमारे अधम उधारे नरक निवारे आदि कथे किंकिणी प्रसोहन सुर नर मोहन सिंघारोहन पितल तले जय जय ओसी सब ठौर निवासन बाय पताल आकाशन ले संकटे निवारण अधम उदाहरण तेज प्रकर खंड तुंद तपे दुख दोख दहंती ज्वाल जयंती याद अनाथ अगाध अच्छे शुद्धता समर्पण तर्क वितर्कण तपत प्रतापण जपत जिवे जय जय ओसी सहस्र प्रकर खण आद नील अगाध अभे चंचला चखंगी अलग भुजंगी तुंद तुरंगण तिच्छ सरे कर कसा कुठारे नरक निवारे अधम उदारे तूर भुजे दामनी तमंके के हर लंके याद तंके क्रूर कथे जय जय ओसी रक्ता सुरखंडन सुंभ चक्रत निसुंभ मथे बारज विलोचन वृतन विमोचन सोच विसोचन कौज कसे दामनी प्रहासे सुख सरना से शुभ्र सुभा से दुष्ट कसे चंचला प्रहंगी वेद प्रसंगी तेज तुरंगी खंड सुरंग जय जय ओसी मैखा सुर मर्दन आदन हाथ का दुर्धंग घंट का विराजे ऋण झुन बाजे भ्रम भय भाजे सुनत सुरंग को किल सुन लाजे किल बिग भाजे सुखोप राजे मध उरंग दुर्जन दल दज्जे मंथन रिजे सब न भज्जे रोह रणंग जय जय ओसी मैखा सुर मर्दन चंड चक्रदन आद गुरंग चाचरी प्रजोदन दुष्ट विरोधन रोष अरोधन क्रूर प्रत्ये धूमराज विदुंसन प्रलय प्रजुंसन जग विदुंसन शुद्ध मते जाल पा जयंती सत्र मथंती दुष प्रदाहन गाढ़ मते जय जय उसी मैं खासुर मर्दन आद जुगाद अगाद गते खत्रियाण खतंगी अभय भंगी आद अनंगी अगाध गते बृडलाज बिहंडन चक्षुर दंडन तेज प्रचंडन आद वृत्ते सुर नर प्रतिपारण पति दो धारण दुष्ट निवारण दुख हरे जय जय होसी मैखा सुर मर्दन विश्व विदुंसन सृष्ट करे दामनी प्रकाशे अंतरणा से ज्योत प्रकाशे अतुल बले दानवी प्रकर खंड सर्वर वरखंड दुष्ट प्रतर खंड वितल तले अष्टायत बाहन बोल निवाहन संत पनाहन गूढ़ गते जय जय होसी मैखा सुर मर्दन आद अनाथ अगाध वृते दुख दुख प्रभक्षण सेवक रक्षण संत प्रतक्षण शुद्ध सरे सारंग सन्ना हे दुष्ट प्रदाहे अर्दलगा हे दुख हरे गंजन गुमाने अतुल प्रवाने संत जमाने आद अंते जय जय होसी मैखा सुर मर्दन साध प्रतक्षण दुष्ट हंते कारण करीली गर्भ कहीली ज्योत जतीली द्वंद मते अष्टायत चमकण सस्र झमकण दामिन दमकण आद वृते डुकडुकी दमंके बाघ बंके भुजा वरंके शुद्ध गते जय जय ओसी मैखा सुर मर्दन आद जुगाद अनाद मते चछरा सुर मारण नरक निवारण पति दो धारण एक भटे पापान विहंडन दुष्ट प्रचंडन खंड अखंडन काल कटे चंद्रान चारे नरक निवारे पद दो धारे मुंड मथे जय जय ओसी मैखा सुर मर्दन धूम्र विदुंसन आद कथे रक्ता सुर मर्दन चंड चक्र दंदान वर्दन डाल बधे सरधार विपरखण दुर्जन धरखण अतुल अमरखण धरम तुझे धूमराज विदुंसन सुंड चुनसन सुंभन पातन सुंभ मथे।

आद सूरत सिवंत के पलट सूरत सिजदा कराए प्रभ एक रूप द्वय के लखाए अंशिज तेज अनभय प्रकाश दाता तुरंत अद्वैना सब रोग सोग ते रहत रूप अनभय अकाल अच्छय स्वरूप करुणा निधान कामल कृपाल दुख दुख हरत दाता दयाल अंजन विहीन अनभंजनाद जल थल प्रभाव सर्वत्र साद जय जात पात नहीं भेद भरम जय रंग रूप नहीं एक धर्म जय सत्र मित्र दो एक सार अच्छय स्वरूप अवचल पार जानी न जाए जह रूप रेख कहे बास दास कहे कौन फेक कहे नाम तास है कवन जात जे सत्र मित्र नहीं पुत्र भ्रात करुणा निदान कारण स्वरूप जे चक्र चयन नहीं रंग रूप जे खेत भेद नहीं कर्म काल सब जीव जंत की करत पाल उर्दंग बिरहत सिद्धंग स्वरूप बुद्धंग पाल जुतंग अनूप जय रूप रेख नहीं रंग राग अंशिज तेज अनभिज दाग जल थल महीप बंधन दुरंत जेह नेत नेत निस दिन उचरंत पायो न जाय जय पैर पार दीनान दोख तहता उदार कई कोट इंद्र जेह पान हार कई कोट रुद्र चुकिया द्वार कई वेद व्यास ब्रह्मा अनंत जेह नेत नेत निस दिन उचरंत त्व प्रसाद सवैये दीनन की प्रतपाल करे नित संतु बालक नीमन गारे पछ पशु नक नाक नरा दिव सर्व समय सबको प्रत पारे पोखत है जल मै थल मै पल मै कल के नई करम बिचारे दीन दयाल दयानित दोखन देखत है प्रदेत नहारे दाहत है दुख दोखन का दल दुजन के बल मै दल डारे खंड अखंड प्रचंड पहारण पूरण प्रेम की प्रीत संभारे पार न पाए सके पदमा पद भेद कते बेद उचारे रोज ही राज बिलोक दराज करो खुरुहान की रोज नटार कीट पतंग कुरंग भुजंगम भूत भविख भवान बनाए देव देव खपे अंगमेव न भेव लख्यु भ्रम से उभरमाए वेद पुराण कतेब कुरान हसेब थके कर हाथ न आए पूर्ण प्रेम प्रभाव बिना पद सु किन श्री पदमा पद पाए आद अनंत का तद वेक्षो भूत भविख भवान अभय है अंत विहीन अनात्मा बदा गुख छिद्र छह है लोकन के करता हरता जल मै थल मै भरता प्रव है दीन दयाल दया कर श्रीपद सुंदर श्री पदमापत है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय है देह भी न स्नेह सबोधन नेह विरक्त के अच्छा है जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दे है काहे को डोलत है तुमरी सुंदर श्री पदमापत लय है रोगंते और सोगंते जल जोगंते वो बांध बचावे शत्रु अनेक चलावत गावत तन एक न लागन पावे राखत है अपनों कर दय कर पाप संभोहन भेटन पावे और की बात कहा कहे तो सौ सौ भेट ही के बट बीच बचावे जाछ भुजंग सो दानव देव भेव तुम्हें सब ही कर द्यावे भूमा का सपताल रसातल जाछ भुजंग सब सिर न्यावे पाए सके नहीं पार प्रभाहू को नेत ही नेत भेद बतावे खोज थके सब ही खुजिया सुरहार परे हर हाथ न आवे नारद से चतुरानंद से रुम नारिक से सब हो मिल गायो भेद कतेब न भेद लखे सब हार परे हर हाथ न आयो पाए सके नहीं पार उमापत सिद्ध सनात सनंतन ध्यायो ध्यान धरो ते को मन मै जे को अमितोज सब जग छायो वेद पुराण कतेब कुरान अभेद नृपान सब बचहारे भेद न पाए सक्यो न भेद को खेदत है अनछेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साक न शोक न संग त्यारे याद अनाद अगाद अपेगत वैग जप्यो तिन्हि कुल तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए बोधान महाव्रत धारे देश फिरो कर भेस्त बोधन केस धरे न मिले हर प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे वो न्यास करे।

अत्र के चलैया छित छत्र के धरैया छत्र धार्यो के छलैया महा सतरण के साल है दान के दिवैया महा मान के बढ़िया अवसान के दिवैया है कटैया जम जाल है युद्ध के जितैया विरुद्ध के मिटैया महा बुद्ध के दिवैया महा मान हूँ के मान है ज्ञान हूँ के ज्ञाता महा बुद्धता के दाता देव काल हूँ के काल महाकाल हूँ के काल है पूर्वी न पार बावे हिंगुला हिमालय ध्यावे गोर गर दे जी गुण गावे तेरे नाम है जोगी जोग साधे पौन साधना की तेग बांधे अरब के अरबी आराध तेरे नाम है फरा के फिरंगी माने कंधारे कुरे सी जाने पश्चिम के पश्चिमी पहचाने निज काम है मरा टाम गेल तेरे मन सो तपस्या कर दीड़ वैत लंगी पहचाने धर्म धाम है बंग के बंगाली फिर हंग के फिरंगा वाली दिल्ली के दिलवाली तेरी आज्ञा में चलत है रूह के रूहेले माग देश के मंगेले वीर बंग से बुंदेले पाप पुंज को मलत है गोखा गुण गावे चिन मचीन के शीस न्यावे ते बते दे आए दुख देह के

सर्व धन दाम फल फूल स्वयं फलत है। देव देवतान को सुरेश दानवान को महेश गंग दान को अभेश कहियत है। रंग में रंगीन राग रूप में प्रवीण और काहू पे न दीन साधा दीन कहियत है। पाई है न पार तेज पुंज में अपार सर्व विद्या के उदार है अपार कहियत है। हाथी की पुकार बल पछ पहुंचत ताहि चिट्ठी की चिंगार पहले ही सुनियत है। कितने इंद्र द्वार कितने ब्रह्मा मुख चार कितने कृष्णा अवतार कितने राम कहियत है। कितने ससुरासी कितने सूरज प्रकाशी कितने मुंडिया उदासी जोग द्वार दहियत है। कितने महादीन कितने व्यासे प्रवीण कितने कुमेर कुलीन कितने जच कहियत है। करते हैं विचार पन पूर्ण को पावे पारता हित अपार निराधार लहियत है। पूर्ण अवतार निराधार है न पारावार पाइये न पार पे अपार के बखानी है। अद्वय अविनाशी परम पूर्ण प्रकाशी महारूप हूँ के राशि है अनासी के कमानी है। जंत्र हूँ न जात जा की बाप हूँ न मायदा की पूर्ण प्रभा के सुझटा के अन मानी है। तेज हूँ को तंत्र है के राजसी को जंत्र है के मोहनी को मंत्र है निजंत्र के खजानी है। तेज हूँ कतार है के राजसी को सार है के शुद्धता को घर है के सिद्धता के सार है। कामना की खान है के साधना के सान है विरक्तता के बान है के बुद्ध को उदार है। सुंदर स्वरूप है के भूपन को भूप है के रूप हूँ को रूप है कुमत को प्रहार है। दीनन को दाता है गनी मन को कारक है साधन को रक्षक है गुणन को पहार है। सिद्ध को स्वरूप है के बुद्ध को विभूत है के क्रुद्ध को अभूत है के अच्छे अविनाशी है। काम को कुनिंदा है के खूबी को देहंदा है गनी मन का निंदा है के तेज को प्रकाशी है। काल हूँ के काल है के शत्रुन के साल है के मित्रन को भोगत है के वृद्धता की वासी है। जोग हूँ को जंत्र है के तेज हूँ को तंत्र है के मोहनी को मंत्र है के पूर्ण प्रकाशी है। रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सिद्धता को वास है के बुद्ध हूँ को घर है। देवन को देव है निरंजन अभेव है देवन को देव है के शुद्धता को सर है। जान को बचैया है ईमान को देवैया है जमजाल को कटैया है के कामना को कर है। तेज को प्रचंड है अखंडन को खंड है महीपन को मंड है के स्त्री है न नर है। विश्व को भरण है के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है। पाई है न पार पार अवार हूँ को पार जाको की जत विचार सो विचार को निवास है। हिंगुला हिमालय का वह बसी हल विद्या पूर्वी न पार पावे असत्य अनाश है। देवन के देव महादेव हूँ के देव है निरंजन अभेव नाद अद्वय अविनाशी है। अंजन विहीन है निरंजन प्रवीण है के सेवक अधीन है कटैया जम जाल के। देवन के देव महादेव हूँ के देवनाद भूम के भुजैया है मोहय्य महाबाल के। राजन के राजा महासाज हूँ के साजा महाजोग हूँ के जोग है दरिया ध्रुम चाल के। कामना के कर है के बुद्धता को हर है के सिद्धता के साथी है के काल है कुचाल के। छीर कैसी छीरा वध छाछ किसी छत्रा नेर छपा कर कैसी छब काल निद्रि के कूल के। हंसनी से सिंह रोम हीरा सी होसना बाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंधरूल के। पारसी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सोरासी सुरंगाबाद निके रही झूल के। चंपासी चंदेरी कोट चांदनी सी चांदागढ़ कीरत तिहारी रही मालती सी फूल के। फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सी ससी सुरंगाबाद निके सोहियत है। हिमासी हिमालय हर हार सी हलब्बा नेर हंस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है। चंदन सी जम्बावती चंद्रमासी चंद्र गिर चांदनी सी चांदगढ़ जोन जोहियत है। गंगा सम गंगधार बकांसी बिलंदावाद कीरत तिहारी की उजियारी सोहियत है। फरासी फिरंगी फरासी इसके दुरंगी मकरान के वृतंगी तेरे गीत गायत है। फकरी कंधारी गोर गखरी गर्दिजाचारी पौन के आहारी तेरो नाम ध्यायत है। पूरब पलाऊ काम रूप अकमाऊ सर्व ठौर मैं बिराज जहाँ जहाँ जाइयत है। पूर्ण प्रतापी चंद्र मंत्र दे अतापी नाथ कीरत।

अब कही पोपा अंडज जे रज से तज कीनी उत भुज खान बहर रच धीनी कहूँ फूल राजा भय बैठा कहूँ सिमट भयो शंकर इकैठा सगरी श्री

लाई राजे सोमनो रत पिया प्यारी सोम्ब पलानो डिगया उपमा बिचारी डुब रतु नालो निकली बरछी दुधारी जान रजादी ओतरी पैन सूही सारी पौड़ी दुर्गा अते दानवी भेड़ पया सबाही शास्त्र पजूते दुर्ग शाह गै सबनी बाही सोम निसुम संघारिया वत जेहे साही फौजा राक्ष आरियां देख रोवन ताही मोहे कड़ूचे घाह दे शड़कोड़े राही भजदे होए मारिया न मुड़ झाकन न

अथ देवी जुकी उस तत्कथन भुजंग प्रिया छंद तुई अस्त्रणी शस्त्रणी आप रूपा तुही अंबका जम्ब हंदी अनुपा तुही अंबका शीतला तोतला है पृथ्वी पूम आकाश तहि की आय तुही मुंड मर्दी कपरदी पवानी तुही कालका जालपा राजधानी महाजोग माया तुही ईश्वरी है तुही तेज आकाश थंबो मही है तुही रिष्टनी पुष्टनी जोग माया तुही मोसो चौदह लोक छाया तुही सुंभ नय सुंभ हंती पवानी तुही चौदह लोकी जोत जानी तुही रिष्टनी पुष्टनी शस्त्रणी है तुही कष्टनी हरतनी अस्त्रणी है तुही जोग माया तुही बागबानी तुही अंबका जम्ब हा राजधानी महाजोग माया महाराजधानी पवि भावनी पूत भव्यंग पवानी चरी आचरणी खेचनी पूपनी है महाबाणी अपनी रूपनी है महाभैरवी पूत ने श्री पवानी पवि भावनी भव्यंग हरि कृपाणी जया अजया हिंगुला पिंगुला है शिवा शीतला मंगला तोतला है तुही अक्षरा पक्षरा बुद्ध बिरदया तुही भैरवी पूपनी सुध सिद्धिया मां बाणी अश्रणी शस्त्रधारी तुही तीर तलवार काटी कटारी तुही राजसी सातकी तामसिया तुही बालका बृदनी अजुआ है तुही दान तुही दानवी देवनी जाचनी है तुही किन्नणी मछनी कछनी है तुही देवते शेषनी दान वेसा सरह बृष्टनी है तुही अस्त्र पेशा तुही राज राजेश्वरी जोग माया महामोसो चौदह लोक छाया तुही ब्राह्मी वैष्णवी श्री पवानी तुही बासवी ईश्वरी करत कियानी तुही अंबका दुष्ट हा मुंड माली तुही कष्ट हंती कृपा कै कृपाली तुम्हें ब्राहणी हुए हिरण नाश मार्यो हरण नाश रंग सिंघणी हुए पछार्यो तुम्हें बावनी हुए तिनो लोक मापे तुम्हें देवदानो किए जच थापे तुम्हें राम हुए कह दशा गरीब खंड्यो तुम्हें कृष्ण वह कंस के ची बिहंड्यो तुम्हें जालपा वह बड़ा ला छकायो तुम्हें सुंभ नै सुंभ दानो खपायो दोहरा दास जान कर दास पर कीजै कृपा पार आप हाथ है राख मोहि मन कर्म बचन विचार जाओ पई मैं ना गणेश प्रथम मनाऊ किशन बिशन कब हुने त्याऊ कान सुने पहचान न तिन सो लिवला की मोरी पग इन सो महाकाल रखवार हमारो मा लो मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवार बाहे गहे की लाज विचार अपना जान मुझे प्रतपरिया चुन चुन सत्र हमारे मरिया देख तेग जग मैं दो चलै राख आप मोहे अवर न दलै तुम मम करो सदा प्रतपारा तुम साहेब मैं दास तिहारा जान आपना मुझे निवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपे आप गरीब निवाजा दास जान कर कृपा करो मोहे हार परा मैं आन द्वार तोहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहेब मैं किंकर थारा दास जान दै हाथ उबारो हमरे सब बैरियन संघारो प्रथम तरो भगवत को ध्याना बार करो कविता बेदनाना कृष्ण जथा मत चरित्र उचारो चूक होए कबले हो सुधारो हित श्री देव

अथ प्रेम कथा कथन कवियो वाच वई हर के संत कबड्डी सुनाऊं तांते प्रभ लोगन रिजवाऊं जो ऐ कथा तनक सुन पावै ताको दोग दूर हो जावै सवैया जैसे त्रिनावत औ अग को सो बका सुर को बद जामुख फारियो खंड कियो सकटा सुर को गह केसन ते गह जह कंस पुछारियो सिंध जराहू को सैन मथियो अर सातों को जय मान है टारियो त्यों ब्रिज नायक साधन के पुन चाहत है सब पापन टारियो सवैया जो ब्रिज नायक जो ब्रज नाय के रुसो कब श्याम पनै फुन गीतन गाय है चातुरता संग जो हर को जस बीज कपितन के सुबने है और अंते सुन जो चर्चा हर की हर के मन पीतर दय है सो कब श्याम पनै तरकै तान।

0: सवैया छंद पाप समूह विनाशन कौ कलकी अवतार कहाँ वहेंगे तुर कच्छ तुरंग सपाश पड़ो कलकाड़ कृपान कंपा वहेंगे निकसे जिम के हर परबते तसोभ दिवाल पावेंगे पल भाग पया संबल के हर जू हर मंदिर आवहेंगे रूप अनूप स्वरूप महा लख देव अदेव लजा वहेंगे अर मार सुधार कै टार कनो बहरो कल धर्म चला वहेंगे सब साध उबाल लह कर दह दुख आंच ना लागन पावेंगे पल भाग पया संबल के हर जू हर मंदिर आवहेंगे दानव मार अपार बड़े रणजीत इंसान बजावेंगे खल टार हजार करोड़ किते कल के कल कृत बढ़ावेंगे प्रकट है जित ही तित धर्म दिशा लख पापन पुंज परावेंगे पल भाग पया ऐ संभल के हरजू हर मंदर आवेंगे छीर महादेज दीन दसा लख दीन दयाल सावेंगे खग काढ़ अपांग निसंग हठी रण रंग तुरंग नचावेंगे रिबजीत अजीत अपीत बटे अवनी पै सुबह जस गावेंगे पल भाग पया ऐ संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे शेष सुरेश महेश गणेश निशेष भले जस गावेंगे गण भूत प्रेत पिशाच परी जय सद ननद सुनावेंगे नर नारद तुम्बर किन्नर जच सो बीन प्रबीन बजावेंगे पल भाग पया ऐ संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे दाल मृदंग मुचंग उपंग सुरंग से नाद सुनावेंगे डफ बार तरंग रबाब तुरी रण संख संख बजावेंगे गण दुंदा ढोलन घोर घनी सोन सुन सत्र सबै मुरछावेंगे पल भाग पया ऐ संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे तीर तुफंग कमान सुरंग दुरंग निखंग सुनावेंगे बरछी अर बैरख बाण तुजा पट बात लगे फहरावेंगे गण जच भजंग सो किन्नर सेध प्रसिद्ध सबै जस गावेंगे पल भाग पया ऐ संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे कौच कृपान कटारी कमान सुरंग निखंग छकावेंगे बरछी अर ढाल कदा परसो कल सूर ते सूल प्रमावेंगे तद क्रुदत वै रण मूर्धन मो सर ओक प्रोक जलावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे तेज प्रचंड अखंड मां शब दुर्जन देख परावेंगे जिम पौन प्रचंड वह पतुआ सब आपन ही उड़ जावेंगे बढ़ है जित ही ते धर्म जिसाला कहूँ पाप न ढूंढत पावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे छूटत बान कमानन के रण शाड़ पटवा पहरावेंगे गण वीर बिताल कराल प्रभा रण मूर्धन मद सुहावेंगे गण सिद्ध प्रसिद्ध समृद्ध सनै कर उचाई कह कृत सुनावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे रूप अनूप स्वरूप महा अंग देख अनंग लजावेंगे पव भूत भविख भवान सदा सब ठौर सबै ठहरावेंगे पव पार अपार निवारण को कल की अवतार कहावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे भूम को पार उतारण को बड़ आच बड़ी छपावेंगे खल टार जुझार बरियार हठी कान को खन ज्यू कहरावेंगे कल नारद भूत पिशाच बरी जय पात्र त्रात्र सुनावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे चार कृपान जुझार बड़े रण मद मा छपावेंगे तर लोथ पलोथ पिथार कणी कान की घट ज्यू कहरावेंगे चतुरानन रोद्र चराचर जे जय सद ननद सुनावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे तार प्रमाण उचान तुजा लख देव अदेव तरसावेंगे कल की गज गाह गजा बरछी गय पाण कृपाण प्रमावेंगे जग पाप समूह विनाशन कौ कल की कल धर्म जलावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे पान कृपान अजान पुजा रण रूप मान दिखावेंगे प्रतमान सुजान अप्रमान प्रभा लख व्योम विमान रजावेंगे गण भूत प्रसाच परेत परी मिल जीत कह गीत गवावेंगे पल भाग पया संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे बाजत डंक अतंक समय रण रंग तुरंग नचावेंगे कस बान कमान गदा बरछी कल सूर त्रिशूल प्रमावेंगे गण देव देव पिशाच परी रण देख सबै ठहरावेंगे गण देव अदेव पिशाच परी रण देख सबै रहसावेंगे पल भाग पया ऐ संभल के हर जू हर मंदर आवेंगे
1: स
0: ਸਿਰ ਖਿੰਡੇ ਛੰਦ ਵੱਜੇ ਨਾਥ ਸੁਰੰਗੀ ਧੱਗਾ ਘੋਰੀਆਂ ਨੱਚੇ ਜਾਣ ਫਿਰੰਗੀ ਵੱਜੇ ਘੁੰਗਰੂ ਗਦਾ ਤ੍ਰਿਸ਼ੂਲ ਨਿਖੰਗੀ ਝੂਲਣ ਬੈਰ ਖਾਂ ਸਾਵਣ ਜਾਣ ਉਮੰਗੀ ਕਟਾਂ ਡਰਾਵਣੀ ਬਾਣੇ ਅੰਗ ਭਜਾਂਗੀ ਸਾਵਲ ਸੋਹਣੇ ਤ੍ਰੈ ਸਹਿ ਹੱਥ ਉਤੰਗੀ ਖੰਡਾ ਧੂਹਿਆਂ ਤਾਜੀ ਪਾਰ ਪਿਲੰਗੀ ਛਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਭੰਗੀ ਜਾਣ ਭਿੜੰਗੀ ਨੱਚੇ ਦਾਇਰੀ ਵੱਜੇ ਨਾਥ ਸੁਰੰਗੀ ਅਣੀਆਂ ਜੁੱਟੀਆਂ ਪੈਰੇ ਧਾਰ ਪਵੰਗੀ ਫੌਜਾਂ ਚੀਰ ਕੈ ਉੱਠੇ ਛੈਲ ਛਲੰਗੀ ਛਾਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਝਾੜ ਚੜਾਕ ਚੜੰਗੀ ਤੇ

मोहिनी शांता जय जय देवी पावाणी पवखंडी दुर्गा सर्वाणी केसरिया बाही कौमारी पैखंडी भैरव उद्धारी अकलंका अत्रि शतराणी मोहिनी अंग सर्वंग लोकाणी रक्तांगी सावी सावित्री परमेश्वरी परमा पावित्री तोतलिया जय बा कौमारी पवपरणी हरणी उद्धारी मृद रूपा पूपा बुद्धाणी जय जंपै सुदंग सिद्धाणी जगतारी भारी भगतायं करतारी भारी मुक्तायं सुंदर गोफनिया गुरजाणी देवरणी हरणी पामाणी पिंपरिया जच्छंग सर्वाणी गंधर्वी सिद्धंग जाराणी अकलंक स्वरूपंग निर्मलियं कणमध्ये मानो चंचलियं आसपाणंग माणंग लोकायं सुख करणी हरणी सोकायं दुष्ट हंती संतंग उद्धारी अनशेदा पेदा कौमारी आनंदई गिरजा कौमारी अनशेदा पेदा उद्धारी अनगंज अपंजा खंकाली मृगनैनी रूपंग उज्जाली रक्तांगी रुद्रा पिंगाछी कड़कछी स्वच्छी हुल्लासी रक्ताली रामा तौलाली मोहनिया माई खंकाली जगदानी मानी पावाणी पवखंडी दुर्गा देवाणी रुद्रांगी रुद्रा रक्तांगी परमेश्वरी माई धर्मांगी मैं खासुर धरणी मैं पाली चिचरासुर हंती खंकाली असपाणी माणी देवाणी जय दाती दुर्गा पामाणी पिंगाछी परमा पावित्री सावित्री संध्या गायत्री पैहरणी पीमा पामाणी जय देवी दुर्गा देवाणी दुर्गा दलगाही देवाणी पैखंडी सर्वंग भूताणी जय चंडी मुंडी सत्र हंती जय दाता माता जय अंती संसरणी तरणी लोकाणी पिंपरणी धरणी दैताणी के करणी कारण लोकाणी दुखरणी देवंग इंद्राणी सुंभ हंती जयंती खंकाली कंकड़िया रूपा रक्ताली तोतलिया जयबा सिंधुलिया हिंगुलिया माता पिंगुलिया चंचाली चित्रा चित्रांगी पिंपरिया पीमा सर्वांगी बोध पूपा पूपा जुज्वाली अकलंका माई निर्माली उछले लंकुड़िया छतराला पिंपरिया भैरो पौहाला जय दाता माता जय दानी लव केसी दुर्गा पामाणी संग मोही सर्वंग जगतायंग निद्रा छुदा पिपासायंग जय कालंग रात्रि सकराणी उद्धारी भारी भगताणी जय माई गाई बेदाणी अनछिद अपेदा खेदाणी पैखरणी सर्वंग संताणी जय दाता माता कृपाणी अचकड़ा छंद अंबका तोतला शीतला साकणी सिंधुरी सुप्रभा सुप्रमा डाकणी सावजा संभरी सिंधुला दुख हरी सुमिला संभिला सुप्रभा दुधरी भावना पैहरी पूतली पैहरा टाकणी चाकणी काकड़ी सिंधुला दुधरा दुर्मुखा दुर्कटा दुधरी कंपिला जंपिला हिंगुला पैहरी चित्रणी चापणी चारणी चछरी हिंगुला पिंगुला गंधर्वा जछणी बरमणी चरमणी परघणी प्रासणी खड़गणी गड़गणी सैथणी सापणी पीमड़ा समदड़ा हिंगुला कार्तकी सोप्रभा अछिदा अधरा मारतकी गिंगली हिंगली ठिंगली पिंगला चिकणी चरकटा चरपटा चावड़ा अचकड़ा तो प्रसाद अछिदा अपिदा असिता अधरी अकटा अखटा अछटा दुधरी अंजनी अंबका अश्रणी धारणी अंभरंग अधरा जगत उधारणी अंजनी गंजनी साकनी शीतला सिंधरी सोप्रभा सांतुल सामला तोतला संभरी गंभरी अंभरी अकटा दुसला दुबिखरका दुर्कटा अमिटा भैरवी पैहरी पूछरा पावनी त्रिकुटा चरपटा चामडा मानवी जोबना जय करी जम्भ हरी जालपा तोतला तुंदला दंतली कालका भरमणा निभ्रमा भावना पैहरी बर बुधा दातणी सतरणी शैकरी दुर्कटा दुर्भिधा दुधरा दुर्मदी अत्रटा अछटा अजटा अभिधि तंतला अंतला संतला सावजा पीमड़ा पैहरी पूतला भावजा टाकणी साकणी झाकणी काकड़ा किंकड़ी कालका जालबा जय मृड़ा ठिंगुला हिंगुला पिंगुला प्रासणी शसणी असणी सूलणी सासणी कन्निका अन्निका तन्निका तौलरी रक्तका सकतका भगतका जय करी चिंगड़ा पिंगड़ा जिंगड़ा जालपा जोगणी पोगणी रोग हरी कालका चंचला चावड़ा चाचरा चित्रता तंत्री पिंभरी चछणी छिंछला दंतुला दामणी दुर्कटा दुभ्रमा दुध शुद्रिता निद्रका निभ्रिखा निर्गमा कदरका चूड़का चारका चापणी चित्रणी चावड़ा चिंपला जापणी तिबिसन पत्ता प्रसाद कथता पर जय
कैसे कै पायन प्रभाव चारो जानक निपट अगट समृत सम संपट सुबट विचारो मन मत करह चरण कमलन पर वह मन मत गुंजारो मातृक सपत सपित पितरन कुल चौथों कुली उधारू बिसन पचो काफी ता दिन देह सफल कर जानो जा दिन जगत मात पर फुल्लित वह देह विजय बरदानो ता दिन शस्त्र अस्त्र कट बांधो चंदन चित्र लगाऊ जा कहो नेत निगम कह बोलत तासु बर जपाऊं सो रठा ताउ प्रसाद कथना अंतर जामी अभय भवानी अति निरख प्रेम पारस को चित की प्रथा पछानी आपन भगत जान पव खंडन अभय स्वरूप दिखायो चकत रहे पेख मुन जन सोर अजर अमर पद पायो सोभत बामह पान कृपाणी जा तर चाछ किन्नर असुरन की सब की क्रिया हिरानी जातन मद की टब कौ खंडियो सुम निसुम संघारे सोई कृपान निदान लगे जगदाहन रहो हमारे जातन बिड़ा लाच चिथरा देख खंडन खंड उड़ाए तूली कारण धूमर लोचन के मासन ग्रिध रजाए राम रसूर कृष्ण बृष्णा देख काल करवा लै कूटे कोट उपाए ताए सब थाके बिन तह भजन न छूटे सुई तौ प्रसाद कथता सोभत पान कृपान उजारी जातन इंद्र कोट कई खंडे किश बिशन क्रोर त्रिपुरारी जाको राम उचर मुन जन सब सेवत ध्यान लगाए तास तुम राम कृष्ण कई कोटक बार उपाय मिटाए अनुभव रूप स्वरूप अगंजन कहो कवन बिद गई है जहबा सहंसर रटत गुण था की कब जहवे कब तैया है ऊम अस्पताल जवन कार चौदह खंड बिहंडे जगमग ज्योत होत पूतल में खंडन अव ब्रह्मंडे सुरठा बिशन पद जय जय रूप अरेख पार जास पाए प्रमाए जय तय भीम को शिवद्वार जास पाए लग्यो निशे सहकार मा तन एक देवते सहंस पे पग जास पाए अनेक किशन राम पाए किते पुन काल पाए बिहान काल को अनकाल कह अन अकलंक मूर्तमान जास पाए पयो सब जग जास पाए बिलान ताय तय अवचार जड़ करतार काहि न जान नर हर जान काहि न लेत तय परोस परियो पसु जय मोह बद अचेत राम कृष्ण रसूल को उठ लेत नित प्रतनाओ कहाँ वह अब जियत जग में कहाँ तिन को गाँव सोरठा तास क्यों ना पछा नहीं जो होए है अब है न फल काहे भजत पाहन तोय कछु फल दै तास सेवा जा सेवत होए पूर्ण काम होए मनसा सगल पूर्ण लेत जा को नाम बिसन पद राम कली तौ प्रसाद ए बितकीनी जबै बढ़ाई रीजे देव दयाल तह ऊपर पूर्ण पुरख सदाई आपन मिले देव दर्शन पयो सिंह करी असवारी लीने छत्र लंकरा कूद नाचत गण दै तारी राम कली चमकत अस्त्र छटा शस्त्रण की बाजत डर अपार निर्तत पूत प्रेत नाना बेद डैकत फिरत बैतार कोहकत फिरत काकणी कोहरत डहकत कठन मसान कहरत फेरत गगन रेख दहलत बिटरत व्योम विवान देवी बाज सारंग बिशन पद तौ प्रसाद कश्वर मांगो पूत सियाने पूत पविक नहीं तुमरी सरसात चरित हम जाने जो वरदान चहो सो मांगो सब हम तुम्हें दीवार कंचन रतन बज्र मुक्ता फल लीजै सकल सुधार पारसनाथ बाज सारंग बिशन पद सब ही पढ़ो वेद विद्या वेद सब ही शास्त्र चलाऊं सभी देश जेर कर आपन आपे मता मताऊं कह तथास्तु पई लोभ चंड का तास महाबर दै कै अंतर ध्यान होए गई आपन पार सिंह

अर्ध सैस फुन तीन कहिजै भादव सुधी अष्टमी रविवारा तीर सतद्रव ग्रंथ सुधारा एत श्री चरित्र पखे आने त्रया चरित्रे मंत्री पू

कुदरत ने किया। कुदरत बदिया कुदरत मान अभिमान कुदरत पण पाने बै संतर कुदरत धरते खा सब तेरे कुदरत।

0: नान जंतु पाय के संभाले सुमना जिन करते ना किया चिंता बह करनेता सो करता चिंता करे जिनु पाया जग ते सुजुहारे सस्त ते सतिद बाणिया पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तग महला पहला
1: लखन किया चंगियां लखना प्रवान लख

बड़ी सच्चा साहबो जी सचो सच वरताया तिनी सच कमाया सतगुर मिले सच पाया जिन गिरदे सच वसाया मूर्ख सचना जानी मन मुखे जन्म गवाया।